0: Come on, बहुत easy है. Try it.
1: सबके सामने?
0: Why not? Come on, boys.
2: Hey.
0: देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है. देखो.